0: रंगाउ देस मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: तिमी मसँग लभ गर्छौ मुया के मुया
2: क्यार न लभ गर्न परिचर बाले खोज्दा केटासँग बिहार जाने हुन्का

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जसिन तेज
1: मोबाइल वाली अपन पुट्ठा हिला दियो मोबाइल वाली अपन झुमका हिला दियो मोबाइल वाली

0: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जसिन तेज।
1: अगर जो बद्री और बरसात जोनिया और रात सद्दी मान संगे रह जाए रामो राम सृष्टि चक्र डगमगा जाए काल फिर से वज्रार हुई दिन उठी चिरई उड़ी समय पल पल में ओराई समय पल पल में ओराई टोहान फकरल वैस चांद सुरतिया मीठ बास सब मुरझुरा जाई मनो मनोमय टुहान सहकार अनुहार कोमल साथ मीठ बास याद करम तू महीन याद करो मई तुहीन याद करम।

फूला और भूरा के मिलन भिलवा का ई जुनी ते अस्ते हुई औरे जुनी संके लग तू महीने याद करे मैं तुही याद कराऊं।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाउ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेन्स
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9858030479 र 9848213680
4: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
5: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेना कहटु
6: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न पश्चिम नेपालकै अनुभवी वा उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत
5: ए बाट ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त
6: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाउ उपचार गर्न सँगे एनआईसीयु पीआईसीयु आईसीयु हाईटेक अपरेसन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पाजाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
5: ए ओसिनो कला से उहाँ जाइ मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
6: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
5: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सकको वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइट ओत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुन्न कान दम्म होइन विटामिन के उपचार ओ परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत
5: ए ओसिड हो कल से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट
6: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858023697 वो 9804 83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी
7: खुशीको खबर।
8: हाम्रै सहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
7: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालका साथै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालबाट सुगर र थाइरोइडको उपचारका लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।
8: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
7: सम्पर्क नम्बर 081-536-465 98-239-80-665 र 98-482-80-465 नेपालगञ्ज नेसनल अस्पताल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
0: घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ। बर्जर पेंस

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
3: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
4: लहै बधाई छ, अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
2: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-580-36-577, 98-580-28-195 र 98-580-36-811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो लिए बैठे हैं और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो सुरताई प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम परसोता संचालक मियाँ जी पराबिंग माँ जो सदा साथी रहे आज भी हैं चंदा जी। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आ जाओ ये दोस्त आवाज़ मेरी। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हाँ नमस्कार है, अभिवादन है आप लोगों का। तो साथी आप लोगों के प्यारा कार्यक्रम लेके चना जोर गरम आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम संचालक मियाँ जी आ चुके हैं। तो साथी आप लोग एकदम रेडियो से जुड़ा जाए, कैसे कार्यक्रम में यहाँ फ़ोन के लाइन में भी जुड़ा जाए, एकदम तैयारी किया जाए। सुने कैसी 415 के लाइन नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 0970 के लाइन में जी कौन सा रेडियो है कौन टीशन से आप लोग कार्यक्रम का सुना जाते हो कभी हम आप लोगों का बताए थे। आप लोगों के माना जाना हुआ लोकप्रिय रेडियो कृष्ण सार FM जो नेपालगंज बारा बिलासपुर जो बाकी जिला से प्रसार होते हैं, तो ये विश्व में आप लोग का सुना जाते हैं, आइडियो वीडियो दोनों का सुना देखा जाते हैं। तो एकदम लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा जी। तो साथी आज के क्वेश्चन जो रखबे क्वेश्चन के उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। आप लोग मैसेज भी भेजते रहा जी, मैसेज भेजे के लिए है 9855963 में मैसेज भेजा जाए। तो कोई साथी हमरे फ़ोन लाइन में आवे के प्रयास में हैं, देखी को कहाँ से अभी क्वेश्चनों नहीं बता रहा है और आ चुके हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार मिया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपके नाम?
1: नेपाल राजा।
0: नेपाल राजा। और राजा
1: बढ़िया है दोस्त, तुम्हारे इंतजार करित रहे, आज पछलाहरे बैठे रहे।
0: पछलाहरे से और बताओ राजा।
1: और का बताई बताई थे ऊपर वाले दुआ से वो सब जत्ता है श्रोता भाई बहन भाई कितना सारे FM के जत्ता कार्यक्रम वाले हैं सब ये नमस्कार। और बाहर देश विदेश में जो भाड़े भैया आए गए उन लोग के लिए नमस्कार, जो गए जान छोड़ प्राण गए उन्हों के लिए नमस्कार।
0: तो
1: दुनिया में सब कर रहे सब खाए पिए खेले खदिया है कीड़वा पतंगवा माग मच्छर था सब जानवर सब सुरक्षित रहे। और पानी
0: है
1: पानी धारा से थोड़ा दूर रहे।
0: हाँ तो पानी धारा से तो दूर रहे, पर कहूँ कहूँ तो बहुत कर रहा एकदम विनाश हो गया है।
1: हाँ जो सबका ऊपर वाला खुदा रखे नीचे आदमी बढ़िया सुरक्षित रखे।
0: हाँ वो तो ऐसे है, ये है आपके दुआ जो मालिक सुन ले। तो हम यही कहते कि हमरे सागर जी के दुआ लाग जाए, हर बसर एक सुरक्षित जगह पर रहा है, उनके हर दुख मुसीबत से हर बला से वो बचे है कि नहीं।
1: कैसो भी रहे मैंने खुशहाल रहे, खाना पानी से खाए पिए तैयार रहे और दुनिया से बचते रहे।
0: हाँ बस यही दुआ है आपके। तो सागर जी
1: हजी
0: कार्यक्रम कस है?
1: कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है, एकदम मनोरंजन है, सुने वाले तमाम श्रोता लोग के लिए सबके भाई बंद के नमस्कार।
0: हाँ तो जो क्वेश्चन हम रखे उके क्वेश्चन के उत्तर दो बहन, हम क्वेश्चन बतावा नहीं रहा है।
1: अच्छा तो बताओ कि नहीं जान लिया मुँह।
0: जब मैं जाऊँ किसी के घर
1: अच्छा
0: बिन देखे कांपे थर थर, एक नंबर माँ है दुई नंबर माँ है
1: अच्छा।
0: हाँ दुई नंबर माँ है मिट्टी का बनाया मकान, मिट्टी का बनाया मकान लोहे का छत डाला लगाई और शाम सुबह उसके ऊपर रोजाना आग लगाई, दोनों का सही बताओ।
1: हाँ ये बात तो सही है, तो एक नंबर सही लागत है माँ चूल्हा है,
0: एक नंबर के चूल्हा है।
1: अरे मैंने दो नंबर का चूल्हा
0: हाँ
1: और दूसर हुए घर
0: हाँ
1: दूसर हुए बत्ती
0: बत्ती हुए हैं
1: अच्छा
0: ठीक है, वो तो हम आपका लास्ट में बताइए ना।
1: अच्छा
0: कि जैसे जिके घरे हम जाए तो थर थर कांपत है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: जिके घरे जे उ थर थर
0: हाँ थर थर कांपत
1: है। जौन होए तुम देखा कि सही हुई या गलत हुई हाँ। तुम ऊपर वाले हुआ है
0: ठीक है विधाता जाने हैं ने।
1: हाँ और कव्वाली बढ़िया से एकदम सुनाई दिया गई कि सब लोग के दिल खुश हो जाए। कहते हैं कि दर पे आया सवाली कोई खाली न गया, बाबा तेरे दर पे आया कभी झोली भर के न गया।
0: झोलिया भर गई सबकी कोई खाली न गया।
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ जी
0: अच्छा ठीक है हम कव्वाली आपका सुनेबे का ना।
1: अच्छा
0: ठीक है तो सुनाई हो किका किका कव्वाली।
1: पहले आपका और चंदा जी का कितना सारी मैं जितने कार्यकर्ता है सबके लिए सब लोग सुने पूरा बहती टोल मोल देश विदेश गांव पहाड़ जत्ता खेत खरियान में बैठे हुए सबके लिए नमस्कार। सब बढ़िया एफएम कॉल के सुना करें।
0: ठीक है नमस्कार। हाँ साथी सागर बहेलिया रहे हैं जो बिलासपुर से। सागर बहेलिया उर्फ राजा जी हाँ इनके डबल नाम है सागर बहेलिया उर्फ राजा जी। ये फरमाइश करी नहीं है झोलिया भर गई सबकी कोई खाली न गया। हाँ लैला मजनू के गाना है जो कि कहे है अब तो पता लगा हो फिर। साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081-4151-122 के लाइन नेपाल के साथी आओ जी। कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम रही। आप ही कार्यक्रम का एकदम बिंदास के साथ में सुना जाए एकदम इत्मीनान के साथ में सुना जाए। और आप लोग मैसेज भी भेजा जी 98-55-96-306 में मैसेज भी भेजा जी। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जी प्यारा से कव्वाली। कव्वाली के बाद में हम आप फिर मिला जी नंबर में जुड़े रहा जी।
2: दाई धेरे समय देखि महीनावारी गड़बड़ी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले सारे दुख पाएकी छु। कहाँ जादा राम्रो होला?
3: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
2: हो र त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
3: सुन त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन सेतो पानी महिनावारी गडबडी गर्भवती जाँच पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स हर्निया एपेन्डिक्स थाइराइड पित्त थैली गाँठागुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
2: हजुर मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97-6-39-11-786 र 98-2-24-92-377।
4: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
5: रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्परमा यामाहा रेजियार
5: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
6: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
5: बर्जर पेन्स।
7: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
8: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
7: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
8: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
9: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
7: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
8: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
9: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
10: नमस्ते दाई।
11: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यो त भाइ।
10: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
11: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
12: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
13: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
2: हाम्रा विशेषताहरू:
13: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
2: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
13: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाँझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
2: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
13: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्यबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
2: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
13: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
2: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
13: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 081 530 274 र 98 580 21 800 22।

0: हाँ तो श्रोताई छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से सुनागा कवाली। खैर आप लोगन का अच्छा जरूर लाग हो तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। 0 81 415 1122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 1122 के लाइन में आ जाए। कोई साथी हमारे फोन लाइन में आ रहा है मगर चले गए, आवे जाए तो इसे हो ही जाते है, देखी को कहाँ से हैं। हाँ है नमस्कार। हाँ साथी आए चले गए, हो जाते कभी कभी ऐसे हो जाते। तो पहला नंबर में है जब मैं जाऊँ किसी के घर, जब मैं जाऊँ किसी के घर बिन देखे कांपे थर थर, एक नंबर में है। दो नंबर में है मिट्टी का घर, मिट्टी का बनाया मकान लोहे की छत लगाई, सुबह शाम उसके ऊपर रोजाना आग लगाई। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए। उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टीशर्ट दिया जी। कोई साथी हैं देखी को कहाँ से, नमस्कार।
1: जय गुरुदेव।
0: जय गुरुदेव, जय गुरुदेव को कहाँ से।
1: राम किशन बड़े ही।
0: राम किशन बड़े ही।
1: और सब बढ़िया है।
0: हाँ सब बढ़िया, अपन बतावा जाए।
1: सब बढ़िया है हमरो।
0: बढ़िया हो चाहिए ना। बस बढ़िया हो चाहिए। हाँ राम किशन जी कार्यक्रम के उत्तर दिया जाए जो क्वेश्चन के।
1: ए पहले वाला है मोबाइल फोन।
0: हाय
1: मोबाइल फोन, जो मोबाइल जैसे फोन नहीं गवा तो फर फर कांपे लागे थे।
0: हाँ
1: और चूल्हा हो और काका तावा ऊपर से धर देते हैं, वो छत डाल दिन जानो लोहे के छत होएगा, संध्या से का रोटी बनाते हैं।
0: ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ साथी राम किशन बड़े ही रहा है जो डलई पुरवा वाक्य से। तो साथी इसे 0 81 415 1122 के लाइन में आवाज आए कहे से कार्यक्रम जो आप लोग इनके घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश हर जगह पर बाजत है। हाँ तो साथी कोई हमरे फोन लाइन में है देखी को कहाँ से, हमरे प्रार्थी जी इशारा देते हैं। किमिया जी स्वागत किया जाए, नमस्कार।
2: नमस्कार मियाँ जी, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और हो आपके नाम का बा?
2: भद्रा सिंह बा।
0: भद्रा सिंह बा।
2: हाँ जी।
0: घर कहाँ बा?
2: सी गांव, आपके गांव के दक्षिण है।
0: सी गांव है?
2: सी गांव, सी गांव।
0: सी गांव की बी गांव?
2: बी गांव नहीं, सी, ए बी सी तो पड़े हो ना।
0: अच्छा सी गांव है ने।
2: जी
0: और हो भद्रा जी?
2: बस बढ़िया।
0: भद्रा नखतो लागत है तो भद्रा नाम होते है नहीं?
2: भद्रा वहाँ होएगा, अपना बाड़ी ले गया भद्रे भद्रे होएगा।
0: अरे तब का किया जाए
2: है? जाए के बचा लो
0: तो चलो
2: तो हेलीकॉप्टर मंगाओ,
0: हिल मिल के हथियार उठाओ, आगे कदम बढ़ाओ भद्रा सिंह, चलो बचाओ।
2: हेलीकॉप्टर मंगाओ।
0: भद्रा सिंह सिरपाली जी।
2: हाँ जी।
0: हाँ क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए।
2: क्वेश्चन इतना बढ़िया से नहीं सुना है, एक बार बोलिए।
0: एक बार बोली नहीं सुने हो?
2: नहीं बढ़िया से नहीं सुन पाए, हल्ला ज्यादा हो रहा था।
0: जब मैं जाऊं जिसके घर बे देखे वो कांपे थर थर, एक नंबर माँ है। दो नंबर माँ है मिट्टी का मैं मकान बनाया लोहे की छत डाली,
2: अच्छा।
0: और शाम सुबेरे उसके ऊपर मैंने आग लगाई।
2: ये पहले जो नंबर में है भाई वेटर, और दूसरे नंबर में चूल्हा, उदान नेपाली में उदान बोलते हैं।
0: हाँ हाँ
2: दूसरे नंबर में वो है, पहले नंबर में भाई वेटर छत में जो ढलान में थर हुआ छपा हुआ थे।
0: पहला नंबर में का हो
2: भाई वेटर छत में जो चला, हाँ छत में जो ढलान में चलावत।
0: अच्छा ठीक है नमस्कार।
2: नमस्कार जी नमस्कार।
0: हाँ साथी भद्रा सिंह सिरपाली रहा है सी गांव बाके से। तो इसे आप लोग नंबर में आओ जाए 0 81 415 1122 के लाइन में आओ जाए। ये कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलता है। आप एक प्रिय रेडियो किशन सार एफ एम 94 मेगाहर्ट्ज से कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है, जहां हर मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा सेहत है, वहां से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो साथ ही इसे मैसेज भी आप लोगों के तमाम मैसेज है, हाँ मैसेज भेजी है हमारे साथी लिखी ने जयसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से अमर लाल सोनी जी लिखी ने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है ये कहने कि कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, जो हमरे तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँगा या मर के जाऊँगा झोली भर के जाऊँगा, जो हमरे सागर बहेलिया उर्फ राजा जी के फरमाइश के कव्वाली साथी आपका सुने का मिली। तो ये अमर लाल जी कहने हमका अमर लाल के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुना दिया जी। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी नहीं है, ये मैसेज आएगा है जो संगम टेलर जो ये वार्ड नंबर 2 घरवाई टोल नेपालगंज बागेश्वरी मंदिर के ठीक सामने जो पश्चिम रोड लाइन में है, वहाँ से हमरे कृष्णा परियार जी मैसेज भेजी नहीं है। कहने हवाएं चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, हवाएं चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, नए यार मिलते हैं तो क्या मियाँ जी पुराने छूट जाते हैं। अरे पुरान में जितना मज़ा है यार दोस्ती में, उतना नए का अब तो आजकल के नए दूर दूर से हाय हेलो पुराना है तो दिल से दिल मिलाओ थे। तो कृष्णा जी अभी कहाँ मोहब्बत तो उतने है जितना है कि अब उके गहरान उके था कोई पता नहीं है। तो कहीं कोई प्यारा सी कव्वाली सुनाए दिया जाए और हमका कृष्णा परियार के चिन्हे जाने वाले विश्व में जब जितने साथी कार्यक्रम का सुनत हैं सना जोर गरम रेडियो कृष्ण सार FM से जो प्रसार होता है सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते हैं, अपने सुभाष जी का अफरोज खान का और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहते थे। साथी आप लोग मैसेज भेजते रहा जी। अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में सुना जी तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँगा या मर के जाऊँगा या झोली भर के जाऊँगा।
3: रंग बहार रंग बहार
4: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
3: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
4: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
3: बर्जर पेंस।
5: बीर डेंटल
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
7: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ NMC 19393 BDS दिल्ली FAGC मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
6: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
3: सम्पर्क गण
5: प्रजापति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिंग होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451
8: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
9: बाबा के कान पीड़ा थे दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है इतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में हो ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में हो छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
9: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-480-2697 98-580-2697 और 98-014-83-697
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए
10: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है काहे चिंता लेत हो पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है
9: ए अच्छा माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो
10: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया जले घाव के उपचार करे साथ एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर सुरक्षित प्रसूति सेवा बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है
9: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत हैं कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ
10: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे संपर्क नंबर 081-535-717

हाँ तो सुरताई प्यारा से जो कव्वाली रहा है, झोलिया भर गई सबकी कोई खाली न गया। खैर बहुत अच्छा रहा है जो सागर बहेलिया जो उर्फ राजा जी के फरमाइश रहा। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने 81415122 के लाइन माओ जी नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415122 के लाइन माओ जी। कार्यक्रम जो चला था आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगा हर जो नेपालगंज 12 बिलासपुर से जो बाकी जिला से चलत है। साथी बिस्मा आवाज़ है आपके, आइडियो वीडियो सब सुना देखा जाते है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा जी, कहे से कार्यक्रम बस आप लोगन के रहे। तो इसे मैसेज आएगा, मैसेज भेजी नहीं लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं खजुरा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 से। हाँ जो ये मैसेज भेजी ने दिलबहार खां जी, कहने की मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था, कोई प्यारा से कव्वाली सुनाई दिया जी। आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है, धन्यवाद है आपका दिलबहार जी। तो कहने हमका दिलबहार के चीने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहिए थे। ऐसे मुबारक खां जो सऊदी से मैसेज भेजी नहीं लेकिन ना मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, ये कहने की कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। कव्वाली सुने वाले जो नेपाल के ठिकाना हमार है खजुरा गांव पालिका रजनवा 4 बाके, तो अपने पिताजी जो महमूद खां हैं उनका, अपने लौंडा जो हसनैन खां हैं, बैदू यादव हैं, लाल खां हैं, गोमती बनिया हैं, सुरेश सोनी हैं, यानी चीने जाने वाले सब लोगन का, अपने घर परिवार का सब लोगन का सुनाव चाहते हैं, धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी नहीं लिखी नहीं मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, ये कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है। इनके ठिकाना है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं शिवानी ग्रिल उद्योग जो 4 शिवानी ग्रिल उद्योग जो ये आचार जो बाबा कुट्टी से विजय कुमार वर्मा जी। कहने की मियाँ जी आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है, बहुत अच्छा लागत है, एक ठो प्यारा से कोई भी गीत संगीत कव्वाली सुना दिया जाए। हाँ कहने हमका विजय कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का। तो साथी अब हम चली थे पहले 2 बजे के टेम चेक, टेम चेक के बाद में आप हम पहले चल भाई छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में सुना जाए प्यारा से कव्वाली, कव्वाली के बाद में हम नंबर में जुड़े रहा जी, आपसे हमसे बात जरूर हुए, मैसेज पठौते रहा जी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद ना आए हमको हाय, जग सोता
1: है। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
4: सुनो। हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
5: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 9749117886982242
6: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले लिए बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के

0: हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
1: कति अस्पताल धायौँ, कति उपचार गरायौँ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
0: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
2: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
0: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
2: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टिमोट, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9861414169।
3: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
4: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
3: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
4: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
3: कस्तो खबर?
4: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली, यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
3: ए, साँच्चै?
4: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
3: ए, त्यो त झन् राम्रो
4: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
3: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
4: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
3: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
4: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
3: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
4: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
5: नाक, कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
6: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट, ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक, कान, घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9580303479 र 9840821380।
7: अम्मा के दवाई करावे के, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो? पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
7: ए, अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
7: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
4: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: अरे सर, हर गाने का रिमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
1: गाने का रिकॉल वैल्यू है।
0: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना,
2: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना है तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: तर्फ।
1: फोन नम्बर 081-532-375।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
3: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
4: नींद ना आए हमको हाय, जग सोता
2: है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
5: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9848206697, 9858023697 और 9814083697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
6: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ, संपर्क नंबर 9769411786, 9824392377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
7: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: गंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: जाओ।
1: अली बेटे, अली बेटे, अली, अलग जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं।
0: नहीं शांति नहीं, लगता, आज मेरे जाने का वक्त आ गया।
1: नहीं,
0: नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार, बहन, अपने इस भाई को रागे नहीं बांधूंगी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी